0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड टोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे, राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे, पंडता खाली कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां, हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: is CJMR 1320, the voice of the city.
1: लावल आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी, कुछ तेरियां ने कुछ मेरियां ने, तेरा मिलना तेरा विछड़ना, तू कदे परछावे तो नेड़े तू कदे सब तो दूर, तेरा हासा तेरा रोना ते कदे कदे एकदम चुप होना, सब कुछ

0: भी दिमाग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

0: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
1: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
0: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार।

क्या हमारे किस्मत में ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

बॉर्डर पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं चल निकले।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।